0: 불렀어 다시 보너스 빵
1: 미스터 컵 헬러디오 계속 맞아 비대와 회복
0: भरपूर मनोरंजन सहित आठ नौ से उन्नासे में डिश होम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 सीजन पास लिखो पाउनुहोस् 15 दिन देखि 3 महीना सम्म संपूर्ण चैनल हेर्ने पैकेज बोनस यदि अझै लिनु भएको छैन भने आज नजिकैको डिलर दाई मार्फत वा डिश होम को कस्टमर सपोर्ट 01421766 मा संपर्क

0: आजकल एआई वॉइस फेक वीडियो को माध्यम ठगी करने डिजिटल लेंडिंग भन्द झूठो लोन एप बनाकर स्कैमिंग करने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रैप फेक बैंक सर्वे व अफर को माध्यम ठगी करने ठगर को बिग बिगी बढ़े होना इसका ठगर सावधान रहो कुछ समस्या पड़े में व आपू ठगिए बैंक में व नजिके को प्रहरी में खबर करो वित्तीय तथा विद्युतीय माध्यम को कारोबार को सचेतना का लगी स्थानीय बैंक द्वारा जारी
1: Red Bull, Babal Energy.
2: दैनिकको 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: ये हक्यांग या मोला औरे हक्यांग आइनं थोसा उसुरगानु निंगवा कबकपा बैंकिंग रेलाबो फोकुन मुक्तिनाथ विकास बैंक तेंशा आप लोगों चोगुवा मुक्तिनाथ विकास बैंक तेंशा बैंक ओमें बैंक तेंशा और केत मापों
1: आयो सब को घर घर मायो
2: नमस्कार तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो संघ सभा 95.5 मेगाहर्ज।

चार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव तेरी फिर भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सच बना रहा हूँ, बॉडी पसंद है मैं हल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली

प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही, तुझे सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सबको बता रहा हूँ, तुझे मुंह मोरी पसंद है, मैं दिल्ली खाने से बना रहा हूँ, दुनिया में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ।

0: आजकल एआई वॉइस फेक वीडियो को माध्यम ठगी करने डिजिटल लेंडिंग भन्दै झूठो लोन एप बनाएर स्कैमिंग करने क्रिप्टो र इन्वेस्टमेंट ट्रैप फेक बैंक सर्वे वा अफर को माध्यम ठगी करने ठगर को बिगबिगी बढ़े हुनाले यसका ठगरबाट सावधान रहो। कुनै समस्या परेमा वा आफू ठगिएमा बैंकमा वा नजिकैको प्रहरीमा खबर गरौ। वित्तीय तथा विद्युतीय माध्यमको कारोबारको सचेतनाका लागि स्थानीय बैंकद्वारा जारी
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि